0: एक्सट्रीम इनर्जी ड्रिंक
1: टाइम चेक अहिले ठीक 7 बजेको छ.
2: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी.

0: एक्सट्रीम इनर्जी ड्रिंक
1: टाइम चेक अहिले ठीक 8 बजे को छ
2: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी

0: बजे बजे ताकुते रेडियो ये बरी तो भाई मुझे जो रेडियो रे रेडियो मस्तंग दिरी तमु केरी समाचार खाल खाई बो
1: आमे दिन गम ये बस जमले आमे ये थेलो से थिजो
0: बर्थाली दे सेवा ग्रही मरकरी नेपाली कांग्रेस सभा केन्द्रीय सदस्य रे लमजुन द कैले आरक्षण कोटर बे केन्द्रीय सदस्य में उम्मीदवार की बरी प्लूले जाना नेता मन
2: के मय रेडियो मस्तंग द कैली दिन नई नानर बे 8 बजे खबे तमु के समाचार ये बरी आमले ओ

छ्यादलो रेडियो मर्सङ्गी 95 मेगाहर्ज दिएर इन्टरनेट अनलाइन रेडियो मर्सङ्गी .org नानर 8 बजे खबर तमुक्यो मर्सङ्गी फेटेरी गाँ खुसुमाया तमुसोला टेबा म वैसुरी।

लमजुङ्गरपै राईनसीजी तारखबा आर्थिक वर्ष ऐना लागि 40 करोड़ रूपियाँ संघीय अनुदान योबा तैमु चलिबा आर्थिक वर्ष ऐना तुलनारी झण्डै 4 करोड़ कम योबा तैमु

तारांगेदु ताए फेटे लमजुङ्गरबे राइनस नगरपालिकाजी चलिबा आर्थिक वर्ष तुलना रे तारखबा आर्थिक वर्ष रे 4 करोड़ भन्दा कम मुई हो तैम सरकारले सार्वजनिक लब नासत वित्तीय हस्तान्तरण अनुसार भए राइनसी तारखबा आर्थिक वर्ष भए चलिबा आर्थिक वर्ष भन्दा तुलना रे 3,86,00,000 रूपियाँ कम मुई हो तैम राइनस नगरपालिकाजी आर्थिक वर्ष रे 40 करोड़ रूपियाँ मुई संघीय अनुदान योगा तैमो चु नगरपालिकाजी तलिबा आर्थिक वर्षरी 43 करोड़ 97,00,000 रूपियाँ योलो राइनस्वर नगरपालिकाजी योबा मध्येरी बजेट नोर्वे तारखबा आर्थिक वर्षका लागि पुँजीगत प्रकृति विक्री 1,92,00,000 दिएर तलिबा तर्फरी 36,08,00,000 रूपियाँ यो बताइम चु मधेरी राइनसरी 1,22,00,000 रूपियाँ पुँजीगत प्रकृति समपूरक अनुदान मो विषा 1 करोड़ रूपियाँ चलिबतर्फरी विशेष अनुदान म राइनसरी तारखबा आर्थिक वर्षैना लागि खब मुई मधेरी 29,50,00,000 रूपियाँ सशस्त्र अनुदान म विषा सशस्त्र अनुदान तर्फरी थेमेजी 28,80,00,000 रूपियाँ मुई डेर चलिबा तर्फरी 17,00,000 रूपियाँ मुई पुँजीगत प्रकृति मुभा बीम छलायो तारखबा आर्थिक वर्षरी राइनसी योभ समीकरण अनुदान तर्फरी 8,28,00,000 रूपियाँ मु विषा समीकरण अनुदान तर्फरी के थिबा आधारहरी 47,00,000 रूपियाँ योबा तस्विम विषा 4,81,00,000 सूत्ररी आधारित अनुदान दिएर 3 करोड़ रूपियाँ न्यूनतम अनुदान योबा तैम डिभिजन थे कार्यालय लमजुङजी तलिबा आर्थिक वर्षरी कृषि क्षेत्र प्रणाली प्रवर्धन कार्यक्रम नोरी किसान मैती अलैची खेती रुबै लागि सहयोग ल बताइम कार्यालयना अनुसार जिल्ला रिप्लिउलो सामुदायिक डेरा क्री कबुल्याती थे समूह लैमरी 16.5 हेक्टर क्षेत्रफलले अलैची रुइबा तैम जिल्ला रुबै लिए जसो कृषकमै अलैची लिए रुचि थिएबा तै बर्दिसी या बतैमरी कृषक महिना चाहना दिएर आय अर्जन दे बालो झुर्दीबा लागि थिएन वन कार्यालयजी वृक्षारोपण नोरी कृषि क्षेत्र प्रणाली प्रवर्धन कार्यक्रम पोखैम सामुदायिक कबुल्याती थिए क्षेत्री उतिस दिएर मालटोइन सिँदुइन छारी दिएर खोल्छा खोल्छी चाँदा क्याँद क्षेत्री अलैँची उत्पादनले छाबा तब मोबालिसु मर्सिङ्गी नासापालिकर बैङ हेउलो सामुदायिक दिएर दुर्दिर्वे क्रि सामुदायिक दिएर क्रि कबुलायती थिए रे राइनासबे क्रि सामुदायिक थेरी अलैँची तुरुबा डिभिजन वन कार्यालय वन अधिकारी दिएर सूचना अधिकारी सन्तोष खनालजी सुन्दरबजार नगरपालिकातिर ओल्ड लिङ्क कम्युनिकेसन होइन संयुक्त साझेदारी नगर नोरी मेट्रो वाइफाई जोडदिवा केस सुरुलाई म पहिलो चरण रि सुन्दरबजार नगरपालिका 6 मिलनचोक वडा नम्बर 7 पाउँदीतिर वडा नम्बर 9 सिउँडी 12 रि सेवा विस्तारण केस सुरु लबा नगरपालिका श्री भीमो सु सेवा त के सर्वसाधारणमा आफैन मोबाइल नम्बर दर्ता लैमरी दिनभर 400 MB डाटा मुई आफै हो चलिनु बताइम चढेबालो हो ओलिङहरू भए इन्टरनेट प्रयोगकर्तामै जीविनी दिनै 10 GB डाटा मुई आफै हो चलिने व्यवस्था समेत लैमु डिजिटल पहुँच विस्तार सूचना प्रविधि प्रवर्धन दिएर मिमेन सहज इन्टरनेट सेवा पिबा लब उद्देश्य जी चु कार्यक्रम सञ्चालन लब नगरपालिका जी पेम सरकारजी तारखबा आर्थिक वर्षैना लागि दोर्दी हिमाल क्षेत्रैन पर्यटन पूर्वाधार विकास कार्यक्रम नोरी 5 करोड़ रूपियाँ मुई विनियोजन लैम चु मुइदा क्या दोर्दी क्षेत्र पर्यटन प्रवर्धन लबदे बालयो कृषि जटीबुटी दिएर नासतहर भए आर्थिक गतिविधि समेत सकारात्मक प्रभाव पार्दिबा बीम दोर्दी नासपालिका अध्यक्ष युवराज अधिकारीजी रिवा समाहिता क्या आयो लबा पहलजी तार सार्थक त युवा बिमारी विनियोजित मुइजी दोर्दी क्षेत्र तयोगे विकास दिएर नयाँ सम्भावना सिर्जना लब विश्वासलाई म थिएन अनुसार नासुथेमेजीले वर्ष त उहीसित क्या मुखा क्यूब रहन आधारित पर्यटन प्रवर्धन जटीबुटी खेती विस्तार दिएर कृषि पर्यटन विकास होइन मोरे तारा क्रमशः रूपरी पुरातत्वशी यावा बीम अध्यक्ष अधिकारीजी दोर्दी हिमाल क्षेत्र प्राकृतिक रूपरिबेले छ्यावा दिएर जैविक विविधता दिएर पर्यटन लेयो सम्भावना मुभा पूर्वाधार विकासका लागि खब मुई लेयो महत्वपूर्ण मुभा बीम अध्यक्ष अधिकारीजी चुदकिया दोर्दी नासापालिका नोर मात्र आतना लमजुङ दिएर गोर्खा जिल्ला पर्यटन क्षेत्र कृषि उत्पादन जडीबुटी

र नासुथमे व्यवसाय दिए समेत प्रत्यक्ष लाभ योबा बीमा कोलस्त नासपालिका वडन टक्सरारी चल्दी खबर सोरोबे सही सुनवा तालिम छिव कोलस्त नासपालिका रे कृषि विकास शाखाजी थेमैना आर्थिक वर्ष 82-83 संज्ञा सशस्त्र कार्यक्रम नोरी सैंसु पकेट क्षेत्र विस्तार लभै लागि सैंसु नभै लागि तालिम आयोजना लै म कार्यक्रमै लागि छुटेब मुइ 12,00,000 रूपियाँ मुइ दाक्या सैंसु पकेट विस्तार लभा तै म तालिम रि समूह रि आबद्ध मुभा किसान मैदी सैंसु नभा सैंसु व्यवस्थापन सैंसु नमहठीवा तरिका दिएर सैसु नव व्यवसाय मैले विभिन्न पक्षबारे व्यावहारिक दिएर प्राविधिक बारे जानकारी समेत पिलो छलायो सहभागी मैले 50% अनुदान दि सैसु घारदे बालो मलखु पंजा फिडर पातवा सामान मे बिनी सहयोग पिम बिरसा नगरपालिका 11 वडा स्तरीय मृमैना सञ्जाल गठन लैम मृमैना नेतृत्व विकास क्षमता अभिवृद्धि दिएर समाजर्व गतिविधि सक्रिय सहभागिता बढ़ेको उद्देश्य गठन लभा सञ्जालैन अध्यक्ष सपना श्रेष्ठ चुन्दी म अध्यक्ष श्रेष्ठ नेतृत्वले 11 सदस्यीय मृमैना सञ्जाल गठन लैम सञ्जालर्व उपाध्यक्ष लक्ष्मी घर्ती सचिव एम कुमारी श्रेष्ठ दिएको सदस्य सरस्वती परियार चुन्दी म अरू सदस्य समेत सर्वसम्मत रूपले चुन्दी म मृमैना वडा सदस्य जमुना श्रेष्ठ अध्यक्षता दिएर विश्व नगरपालिका 11 अध्यक्ष शिवप्रसाद जोशीना प्रमुख अतिथा तर कार्यक्रम तलो कार्यक्रम पोइमरी वडाध्यक्ष जोशीजी मृमैना सक्रिय सहभागिता बिना समाजर्व विकास सम्भावना अरे बाथिजी मृमै सञ्जालजी ओडानुरी मुभा विभिन्न मृमै समूह माझरी समन्वय लैमरी सामाजिक आर्थिक दिएर सचेतनामूलक गतिविधि मेरे प्रभावकारी रूपले वैंसो बर्देल खाँबा विश्वास के म

लमजुङ्गर पै राइनोसी तारकाबा आर्थिक वर्षले 40 करोड़ रूपियाँ मुइयोबा संघीय अनुदान रियोबा तै म कृषि क्षेत्र प्रणाली प्रवर्धन कार्यक्रम नोरी लमजुङ्गर बेङ्गौलो सामुदायिक दिएर कबुलेती थेरी अलैची रुइबा तैमो 1,23,000 तुरैसी म दोर्दी हिमाल पर्यटन पूर्वाधार विकास लबै लागि 5 करोड़ मै विनियोग छन् देकोलो सोथर 9 टक्सरहरी सैसु पकेट क्षेत्र किसान मैदे सैसु नभै लागि तालिम दे बालो सैसु घाट समेत चोइ म नानर खब तमुकी मर्सन्ती फेदे तखोबे लागि छिजी प्राविधिक थु दिपेस्ते धन्यवाद पिमारी फेदे कचिक्याङ खुसीमाया तमुसियो विदा कि म रेडियो मर्सन्ती 95 मेगाहर्ज दिएर इन्टरनेट अनलाइन रेडियो मर्सन्ती .org यदि

तैनू ओदे नाल मिलाउण आया सी। मैं ते बस अपनी दोस्ती निभाउण आया सी। मैं ते बस अपनी दोस्ती निभाउण आया सी।

अगर उससे बातें करनी है तो फिर नजर झुका के करे, तो फिर नजर झुका के करे।

0: मैं सिर्फ एक लड़की की खातिर अपनी सारी प्रॉपर्टी नहीं खो सकता। वो कॉन्ट्रैक्ट में लड़की भागी तो क्या हुआ, कोई भी दूसरी लड़की लेकर आओ, मुझे आज किसी भी कीमत पर शादी करनी है।
1: Excuse me, will you marry me?

0: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक
1: टाइम चेक अहिले ठीक एक बजे को छ
2: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी

0: Yo ya vamos a ser tu niña por lo lograr.
1: विशेष हरारी खोली वा रेडियो मर्सिंग दो क्या ले यो बासरी कत्ते छावा कोई है मु खोनियन तिंग अल्शो
0: ए थबी सनर तीसे गरी बालो तीरो रेडियो मर्सिंग दिंगे न ओ अल्शो
2: क्यों यूँ ये आपे रेडियो मर्सिंग दी एफएम 95 मेगाहर्ट्ज़

0: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टाइम चेक अहिले ठीक 4 बजेको छ
1: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी

0: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक
1: टाइम चेक अहिले ठीक 5 बजेको छ
2: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी
3: तपाईं रेडियो मर्सेन्जी एफएम 55

0: एक्सट्रीम इनर्जी ड्रिंक
1: टाइम चेक अहिले ठीक 6 बजेको छ।
2: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी
3: मर्सिडीज़ FM 95 मेगाहर्ट्ज़।

0: एक्सट्रीम इनर्जी ड्रिंक टाइम चेक अहिले ठीक 9 बजेको छ
1: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी

0: भए भने आरी
1: सिद्धार्थ ब्याङ्कर क्यारे जन हेजरी जारी सन्देश
2: सिद्धार्थ ब्याङ्क सम्बन्ध सधैँभरिलाई।